0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवेदन फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवेदन फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

और अब तो ये जीना तेरे बिना एक सजा है यार, सजा है तेरे बिना, ये जीना सजा है तेरे बिना। जुनिता गांधी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर।

ए जाना, जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, नेवर। अब इतना सुंदर गीत के बाद मैं तो कहूंगा कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है और क्या सुनना है।

0: Tudo é que leia brasafest.nl.
1: Now I don't want to go back. Fall in love with she. I come down to Trinidad and see a sweet lady.
0: Programa jo rahega lamba chaura rahega be aapke hum batai la. कौन कौन बेंचेस खेलेगा अल टॉप फॉर्मेट्स सब जबर जबर फॉर्मेट्स जो है नीदरलैंड में सब वहां पे रहेगा एक्ट अख्तर अलका एक को ना मिसी हाईगा ससेंदर अलमाल अल टॉप फॉर्मेट्स दी फर्दीनन हम ऑफ सोन स्टेज पे स्टैंड प्लस ऑफ एसके मेन स्टेज पे वहां पे रहेगा दो गो हाल दो एरियाज हाल इन जो हैगा बहुत लंबा चौड़ा बड़का स्टेज ओमन रहेगा भी और एक तवेद हाल जो है वो रहेगा एक्ट फूड कोर्ट ओकर मतलब हैगा फूड लॉन्च कोर्ट हमें चाहे बोले के तू वहां पे लॉन्च कर सकेगा तू वहां पे अपन खाना पीना खाइए और तू कुर्सी तफरा तोड़ खाती रहेगा वहां पे जहां पे तू रुस्तक से बैठ के इवन चेस खाई सकेगा अपन परिवार के साथ मैं चुफरिंद डोंट मिस दिस हियर विल यू एफ बाय साइड विद द हेल फैमिली. Het is natuurlijk een familiefestival. Dat houdt in dat iedereen welkom is. De kinderen zijn welkom, maar ook Aji Aja.

Sanjay Jodha, live on stage, बड़ा सा फेस्ट परियार, हम ये उखनीते, वेल हम वहाँ पे रहबे, और ये गनवा जो आएगा, बॉय, द हाई कवोन डांसर, हम काम धंधा वहाँ छोड़ के, हाई कवोन डांसर, द बेनिक ऑफ द डांस फ्लोर, यही तो होग.

लाइव ऑन स्टेज ब्रासा फेस्ट पर आप सुनेंगे ये गीत मैं संजय जोधा एक्सक्लूसिव के साथ यस मैं सन आई म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव लाइव ऑन स्टेज वाओ वट मोमेंट गाट दैट वर्डन हम तो के बिलीव करिला हिला देखो हम लोग यार दन हाँ शहर हम लोग हिला देखो

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

जिंदगी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से समस्त परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ीफ़नन तख्त अख्तियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह संदर फान जेल्डरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखाराम भोला की मृत्यु अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्त अख्तियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह सांदर फान जेल्डरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखाराम भोला की मृत्यु अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार के शाम में 6:30 से 7:30 तक फ्रेडा खानस्तांद फन हालफ ज़ीफ़न तोत हालफ अख्त उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 3:00 जात्रदख आसांद द्री उर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार भोला के दुख में शामिल है।

इसी तरह से भी आपने सुने हैं गाते चले उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आप सुने हैं उजाला से कॉफी चाय मिदा शो एंड एक बेनो नतुलक इंतजार में है ऑफ आनंद चंद्रिका सिंह, जिसके साथ हम बात करने वाले हैं ऑफ अलग जाक दिया टू दून आज के न्यूज या पिछले वीकेंड के बारे में जो न्यूज था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड नतुलक लुख्तग ऑनवेर पर हमने जाने लगा कि कौन onderwerpen उले krijgen, maar ik heb wel één onderwerp die ik vorige week had aangekondigd. Ook er waren met hem hier maar in Labatij. Dus zometeen op Ujala Radio.

रविवार उजाला रेडियो में हैं सुनने वालों, हर एक कामकाज के लिए आप हमारा वेबसाइट पे जाइए ujala.net। प्रोग्राम में हम आपको नाम सुनाने गुजार हैं मुखा सिंह के आवाज में एक्सप्रेस म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सप्रेस ook aanwezig op 29 of 30 augustus Ujala's Brasa Mela Fest in Den Haag, GIA Event Center. Mukasin.

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: म्यूजिक का सफर उजाला रेडियो पर जारी है.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम सूरीनाम, ही स्पीक्स वेरी लिटिल हिंदी बट इज वेरी फ्लुएंट इन डच. हाउ अबाउट वेलकमिंग मिस्टर रामदेव चाइटू.

0: मना कर
1: उजान रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है
2: live vanuit de hoofdstad
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
3: ये Ujala Radio है और Ujala Radio पर अब यहां से गीतों का सफर जो कभी खत्म नहीं होता शुरू

इसी तरह से भी आपने सुने हैं गाते चले उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आप सुने हैं उजाला से कॉफी चाय मिदा शो एंड एक बेन नतुलक इंतजार में है ऑफ आनंद चंद्रिका सिंह, जिसके साथ हम बात करने वाले हैं ओवर अलग अलग दिया टू दून आज के न्यूज या पिछले वीकेंड के बारे में जो न्यूज था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड नतुलक लुख्तगे ऑनवर्प हमने जानी लड़की कौन ऑनवर्प उले कहेगा मैं एक वेल एन ऑनवर्प दी एक फॉर वीक हाथ आल हाथ आंगकोंडर ओकर बारे में हम भी मांगे लगाते हैं द सोमेटेन ऑफ उजाला रेडियो

उजाला रेडियो यहीं सुन वालों हर एक काम काज के लिए आप हमारा वेबसाइट पे जाइए ujala.net। प्रोग्राम में हम आपको नाम सुनाने गुजार रहे हैं मुखा सिंह के आवाज में एक्सप्रेस म्यूजिक फरमासी एक्सप्रेस ओक अवेसर ऑफ 29 ऑफ 30 अगस्त उजालास Brasa Mela Fest in Den Haag via Event Center met Mukka Singh.

बजकर 16 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनवालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन रामदुलारे पांडे। आज बुधवार है मेरे प्यारे सुनवालों, 8 तारीख जुलाई साल 2026। सेवा करने चले आए हैं फिर एक बार आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आज सेवा हम करेंगे मेरे प्यारे से नौलो हमेशा की तरह रात्रि में 9 बजे तक, और प्रणाम लेकर हम आज फिर एक बार खिदमत में आपका हम रहेंगे। बैक टू द फ्यूचर लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से, जहां से ये प्रणाम एकदम लाइव बनाया जा रहा है। तो तहदिल से स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे सुनवालों, जहां पर भी है आप, जिस हाल में आए आप, स्वागत करते हैं आप सभी को। आज फिर एक बार मेरे प्यारे सुनवालों अनु मलिक जी के प्रोग्राम हम सजाएंगे, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जिनके नाम पर बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हैं। पिछले हफ्ते पहला इनका प्रोग्राम हमने बनाए थे, आज दूसरा, और बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं आज के प्लेलिस्ट में मेरे प्यारे सुनवालों। आप ही सुनेंगे कि कितने हिट सॉन्ग्स इनके नाम पर लिखा गया है, और कुछ कुछ गाने ये भी गाते हैं, वो भी अगर हो प्लेलिस्ट में तो आपको हम सुनाएंगे। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनवालों हर एक घंटे पर इश्तिहारे आप सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात और सड़क का क्या हाल है, और उनके साथ साथ भी 7 बजे उजाला रेडियो के जरिए थोड़ा सा मृत्यु समाचार है, मौत की खबरें जो भी पुकारा जाएगा। Here on you are, बरिख्त फन ऑफ लाइड, नाट ब्रेक फन सेफ यूर, here of you are। आपकी हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेरे प्यारे सुनवालों आपकी फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप तार के जरिए अपना काम काज दिवा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, या तो मेल के जरिए। मेल आप लगातार कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी वक्त, info@ujala.nl, और अगर आप तार करना चाहोगे तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे, और वो भी नंबर 02049-9807 पर, van maandag tot en met zaterdag, 's morgens 10 uur tot en met in de middag 3 uur op 020-409-0807. Aapke farmaishe zaruri khabare maut ke khabare, jo bhi aap karwana chahoge, jab bhi aapko Ujala Radio ko zarurat pare, info@ujala.nl aap mail kare ya to tar kare daftar ke din, daftar ke waqt, daftar ke tar par 020-409-0807। और स्टूडियो में अगर आप बातें

0: ना चाहोगे व्हाट्सएप के जरिए दान वेट यू टॉक 020-363-0808 तू जाने है तो। आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आई एम जॉन डी मेलो गीत का बोल है, किशोर कुमार हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, एक गीत जो समीर और इंदवर साहब जी ने मिलकर लिखा है और ऑफ कोर्स जिसका संगीतकार है अन्नू मलिक जी। निकाल रहे हैं फिल्म जिसका नाम है तागटवार और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों 1989 का है, निहतीन निहनन तख्त, किशोर कुमार को पेश करता हूँ।
1: I'm Tony Nay and Tony Nay Macaroni Nay.

हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन एक मस्सी भरी गीत, लेकिन इसमें एक बात भी है कि या इकोमेफनी टू डोर्ड मेंस एक एक बेन इफ अटोर्ड क्वाइट माफी चाहता हूँ, ये समीर और इंदौर का लिखा हुआ गीत है और अनु मलिक जिसका संगीतकार है, फिल्म ताकतवर का एक नगमा और ये फिल्म मेरे प्यारे से नॉल 1989 का है, निहति निहन तख्त देवद धवन जी इनका डायरेक्ट क्या हुआ मूवी जिसमें संजय दत्त गोविंदा जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है, इन दोनों ने काम किया है अनिता राज के साथ, नीलम कोठारी, अनुपम खैर, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, शक्ति कपूर, तनुजा और अनिल धवन। यार ऐसा तुम बहुत छापिन तत्व क्या हल्क से इसकी मस्ती भरी है, लेकिन बहुत छापिन मेरे प्यारे से लोग, ये उजाला रेडियो है और लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से पेश कर रहा हूँ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मैं हूँ रतन राम लाड़े पांडे और आज रात्रि में 9 बजे तक हमेशा की तरह ये प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए। ओपनिंग सिलेक्शन आप सभी ने सुनी और फिर एक बार मैं आप सभी को स्वागत करना चाहूँगा और चुन करने के लिए, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी एंजॉय करेंगे क्योंकि नगमाएं लाजवाब बेमिसाल हैं। दमीज सफन 90s और मिलेनियम के बाद भी कुछ गाने हैं आप तक जो हम पेश करेंगे आज के प्रोग्राम में। समीर का लिखा हुआ गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, एक फिल्म जिसका नाम है आगाज और आगाज फिल्म 2000 का है, मिलेनियम ईयर का है, एक नगमा जो बहुत रोमांटिक है और जो बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे अनु मलिक के साज और संगीत पर, कि मन तेरा मेरा मन एक रहे, ये तेरा मेरा मन।

मन तेरा मेरा मन एक रहे, तेरा मेरा मन मोहब्बत का मतलब समझने लगा हूं और मैं दिल बन के तुझे में धड़कने लगा हूं। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजें, खूबसूरत गीत समीर का लिखा हुआ दोनों ने मिलकर गाए हैं और वो भी अनु मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर भी है, कंपोजर, क्या क्या ये नहीं करते हैं। ये था एक नगमा फ्रॉम द मूवी आगाज और मिलेनियम ईयर का है 2000 का मूवी, जिसका डायरेक्टर योगेश ईश्वर और सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, जिन पर ये गीत भी पिक्चराइज किया गया है, इन दोनों ने काम किया है ये मूवी में। और इनके अलावा मैं देखता हूँ अनुपम खैर, नम्रता श्री रोडकर, जूनी वॉकर, शरद सक्सेना, गुलशन ग्रोवर, आसरानी, अलोक नाथ, आशा सखदेव, यूनुस परवेज, शरद कपूर, कौन है विजू खोते, पद्मिनी कपिला, ये नाम पढ़ता हूँ मुझे का निफेस सूर्य नाम बंदे के कहा कुपिला ये है कपिला, ओ नहीं आ है या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। और मैं जानता हूँ कि ये फिल्म में और भी खूबसूरत नगमाएं और है। आज के लिए इस गीत को हमने चुना है और उम्मीद और आशा करते हैं कि सुनते वक्त भी बेहद आप सभी ने एंजॉय की है। अच्छे सेफ मिनट ओवर द क्लॉक मेरे प्यारे सुनने वालों, 7 मिनट गुजर चुके हैं, 6:30 ओवर हाफ सेफ हो रहे हैं। एक नगमा जो काफी पॉपुलर हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों, असल में ये गीत किशोर कुमार को गाना चाहिए था। फिलहाल रिकॉर्डिंग का दिन किशोर कुमार वहां पर हाजिर नहीं हुए, टार किया गया है उनके बेटे को और अमित कुमार जी को, वो भी नहीं आए। तो ये गीत अनु मलिक जी जाकर गाए हैं खुद कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ और गीत काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन अनु जी बहुत ट्वाइफल कर रहा था कि शायद मेरी आवाज में ये गीत लोगों को पसंद ना आएगा, तो इन्होंने भी गीत कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू का भी रिकॉर्ड किया था। लेकिन फिलहाल उन्होंने, प्रोड्यूसर ने भी, डायरेक्टर ने भी जुआ खेला और अनु जी का वर्जन पिक्चराइज किया गया है ये मूवी में। एंड दैट वाज अ हुई सेट, क्योंकि गीत काफी पॉपुलर हुआ है। इंदवर का लिखा हुआ एक डांस सॉन्ग, कविता कृष्णमूर्ति और अनु मलिक गीत मिलकर गाएंगे, अनु मलिक की साज और संगीत पर। नीहती नख्तन तख्तक का एक फिल्म है 1988, जीते है शान से, जुली जुली, जोनी का दिल तुझ पे आया जुली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू तो मेरी जान है।

0: Ya, ya, ya. जुली जुली जूनी का दिल तुम पे आया जुली और मुझे कोई और नहीं चाहिए ना सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा मुझे बस जुली चाहिए। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे से नॉल ऑफ पॉपुलर सॉन्ग अन्नू मलिक जी और कविता कृष्णमूर्ति जी का गाया हुआ, इंदुवर ने लिखा, संगीतकार ऑफ कोर्स अन्नू मलिक जी। निकाले हैं 1988 निहती नाख्तन तख्त का फिल्म जीते है शान से। मुई फिल्म केवल शर्मा जी का डायरेक्ट क्या हुआ, जिसमें मिथुन ऑफ कोर्स इन्हीं पर ये गीत तो पिक्चराइज किया गया है मूवी में। इन्होंने काम किया है संजय दत्त जी के साथ, गोविंदा मंदाकिनी, विजेता पंडित, डैनी डेंजोंगपा पैंटल, दिनेश हिंगू, सत्यन कप्पू, विजू खोटे, तिवारी सुधीर भी है। या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। और ले चलता हूं अब की बार गीत जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग। जावेद अख्तर जी इनका लिखा हुआ गीत अन्नू मलिक के साज और संगीत पर गाएंगे कुमार सानू की, जिसकी आने से रंगों में डूब गई हो ये शाम। दिल जले फिल्म का नाम और ये फिल्म 1996 का है। निहत इंसेसन निहत पेश करता हूं।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम

द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, जिसके आने से रंगों में डूब गई हो शाम। जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ, या जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ गीत, रोमांटिक द टाइगर, कुमार सानू ने गाए हैं अन्नू मलिक के साज और संगीत पर। 1996 का फिल्म दिल जले से हमने नगमा को निकाले हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। नीह तीन से नीह तक का मूवी दिल जले, जिसका डायरेक्टर हरि बवेजिया, और एक फिल्म जिसमें अजय देवगन, माधो, सुनली बेंद्रे, अमरीश पुरी जी, शक्ति कपूर, परमीत सेठी, फरीदा जलाल, टिन्नू आनंद और गुलशन ग्रोवर ने काम किया है। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनोलो, आखिरी गीत पेश करेंगे इस घंटे का, और इस आखिरी गीत के बाद हम बढ़ चलेंगे 6 या 7 बजे की ब्रेक की ओर। 7 बजे की ब्रेक की ओर आप सुनेंगे इश्तिहारे, देश विदेश का समाचार, मौसम का कहा हालात क्या है और सड़क का भी, और तमाम सूचनाओं के बाद अफसोस के साथ भी थोड़ा सा मृत्यु समाचार है प्रोग्राम में जो पुकारा जाएगा। Here on you are, bericht van overlijden, helaas hier na de commercial break van 7 uur op You Are Ujala Radio. Aangri geet, once again, de Tiger Kumar Sanu, Anand Bakshi ji ka likha hua geet, ab ki baar ye gaenge, Annu Malik ki saaj aur sangeet par, romantic song, film ka naam Chamatkar, uit 1992-1992, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर राजीव मेहरा, शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर, द ग्रेट शमी कपूर, नसीरुद्दीन शाह, टिन्नू आनंद, देवन वर्मा, इन सभी का एक मूवी है। इस प्यार से तू मेरी तरफ ना देखो वरना तुम्हें प्यार हो जाएगा। पेश करता हूँ खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, और मिलते हैं तमाम सूचनाओं के बाद 16:16

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से समस्त परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ीफ़नन तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह सौंदर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह सौंदर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार के शाम में 6:30 से 7:30 तक फ्रेडखानस्टांड फन हाल्फ ज़ीफ़न टॉट हाल्फ अख्त उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्डे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 3:00 जांत्रदख आंसांद 3:00 किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार भोला के दुख में शामिल है।

ये काली काली आंखें और ये हिरनी जैसी चाल, देखा है जब से तुमको जानम बुरा हुआ मेरा ये हाल। कुमार सानू और अन्नू मलिक जी मिलकर गीत गाए हैं और देवखोली जी का लिखा हुआ ये फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी और जीता हुआ नगमा। अन्नू मलिक के साथ और संगीत पर फ्रॉम द मूवी बाजीगर मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये फिल्म बाजीगर का एक और नगमा आप तक हम पेश करेंगे। एक छेड़छाड़ सॉन्ग, मस्ती भरी गीत, सफर गोराखपुरी जी का लिखा हुआ एक नगमा, अभिजीत भट्टाचार्य। इज दैट सो? नहीं, दैट इज नॉट यू लिखनी सो। वन फोकस में इज दैट विनोद राठौर, अन्नू मलिक और नाइटिंगेल आशा जी। मार एक कमोक फरखे सुनिए वो नगमा भी है, चलो आपको हम सुनाते हैं। इट इज 5:04 फन हाफ आख मेरे प्यारे सुनो वालों, सर 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार, आप सभी को फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। बैक टू द फ्यूचर पेश करता हूँ और आज प्रोग्राम दूसरी बार अन्नू मलिक जी के हिट सॉन्ग्स आप तक हम पेश कर रहे हैं। चलो, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, फ्रॉम द मूवी बाजीगर।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। नाइटिंगेल आशा जी, विनोद राठौर और अनु मलिक जी की आवाजें, सफर गोरखपुरी जी का लिखा हुआ नगमा सभी ने मिलकर गाए हैं, वो भी अनु मलिक की साज और संगीत पर। और उससे पहले ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, टाइगर कुमार सानू देवखोली जी का लिखा हुआ नगमा इन्होंने गाकर सुनाए हैं अनु मलिक की साज और संगीत पर। और वो नगमा फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सिर्फ नहीं थे, गीत फिल्म फेयर अवार्ड जीता भी। बाजीगर के दो नगमाए मेरे प्यारे सुनने वालों, 1993 का मूवी निहत इंद्रिय निहत, अब्बास और मुस्तान बर्मावाला, डायरेक्टर शाहरुख खान, काजोल और कौन है, शिल्पा शेट्टी, राखी, दलीप तहिल, कौन है और दिनेश हिंगू, जॉनी लेवर, इन सभी का एक फिल्म। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम रहे कि आज प्रोग्राम बना रहा हूं आप सभी के लिए, और वो भी हमेशा की तरह 6 से 9 बजे। कल रात्रि को आपके लिए भी प्रोग्राम बनाएंगे यही स्टूडियो से, प्रोग्राम का नाम दिल की आवाज, अलीन मोर्ख बेनेकर फन सीफ तो तीन, नीट फन 3 to 12 और फन 8 to 11 नहीं, मोर्ख हम सेवा में हाजिर रहेंगे 7 बजे, और अगर मौत की खबरें रहा तो मौत की खबरें के बाद 7 बजे से 10 बजे 3 घंटे लगातार दिल की आवाज पेश करने चले आएंगे यही स्टूडियो रोटरडम से, दिल की आवाज एंड 7 to 11 दन बेने करनी थे, आपको मालूम रहे। अगले मूवी की ओर मेरे प्यारे सुनो, आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है जानम, और जानम जो है 1993 का एक मूवी है, निहत इंद्रियन सेवत, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग फैज अनवर जी का लिखा हुआ, अनु मलिक के साज और संगीत पर, विपिन सखदेवा और अनुराधा पौडवाल जी को आप सुनेंगे, अलीन मुतिकत वेल नतुलक स्खर्प से तो, एंड दैट वर्गीट इक वेल इंस, या इट इज स्खर्प हो, पागलपन छा गया और ये दिल तुम पे आ गया। या थोड़ा सा बारिश भी हो रही है, या दत्ते से नीत बाहर, बाहर तो बहुत खूबसूरत मौसम है, लेकिन कुछ नगमाएं हैं आज के प्लेलिस्ट में जो बारिश में गाया गया है, पिक्चराइज किया गया है मूवी में, या एक ऐसा खून रहा है और अच्छे मोयो नंबर्स मांगनी है, बारिश है या नहीं, कहीं पे किसी न किसी लोग ये प्रोग्राम जो सुनते होंगे वहां पर जरूर से जरूर बारिश होंगे, यकीनन दुनिया के किसी भी मोड़ पर किसी ने चुन किए हुए हैं जहां पर बारिश हो रहे होंगे इस वक्त।

पागलपन छा गया, ये दिल तुम पे आ गया, रोका मैंने बहुत पर ये न माना। दिल ही तो है विपिन सखदेवा और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजें, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग फाइज अनवर जी का लिखा हुआ, अनु मलिक के साज और संगीत पर दोनों ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनो लो जानम, और ये फिल्म 1993 का है। नीहत इंद्रिय नीहत मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया है, विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया है, और राहुल रॉय, पूजा भट्ट, आशुतोष गौरीकर, दीपक तिजोरी, टिक्कू तलजानिया और पवन मल्होत्रा जी ने काम किया है। सेवा में मेरे प्यारे सुनोलो, हम पेश करने जाएंगे दो इस घंटे का आखिरी नगमाएं, और निकालेंगे दोनों नगमाएं फिल्म जिसका नाम है इम्तिहान। इम्तिहान फिल्म नीहत इन्फिर नीहत का है, 1994। फाइज अनवर जी दोनों नगमाएं को लिखे हैं, एन नतुरलक संगीतकार अनु मलिक जी। अनु मलिक जी संगीतकार, फिल्म का नाम इम्तिहान, और ये दोनों नगमाएं चलो हम आगे पीछे आप तक पेश कर रहा हूं। हीरो ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में जो अनु मलिक जी का दूसरा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इनके पॉपुलर सॉन्ग्स आप तक हम पेश कर रहे हैं। पहला गीत कुमार सानू और अगला गीत कौन गाएगा आप सुनेंगे हीरो ऑन यू आर।

0: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। अमित कुमार की आवाज में गीत आप सभी ने सुने हैं, फैज अनवर जी का लिखा हुआ, और वो भी अन्नू मलिक के साथ और संगीत पर, फ्रॉम द मूवी इम्तिहान। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम फिल्म नहीं फिर नहीं हत 1994 और इसका एक फैशन और है, इस तरह आशिकी का जो कुमार सानू ने गाए हैं। बात यह है कि लड़की हमेशा सब फिल्म में एक रवीना टंडन भैया, और उन दिनों वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, और हीरो सैफ अली खान और सनी देओल। या एंड देन यही है कारण कि गीत अमित कुमार जी ने गाए हैं, और ये गीत जो है सनी देओल पर पिक्चराइज किया गया, और कुमार सानू वाला सैफ अली खान पर। नगमा हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और उससे पहले ये जो हमने पेश किया था कि दो बातें हो सकती है अब तो जीत या हार की, कुमार सानू की आवाज में, वो भी फैज अनवर जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग, अन्नू मलिक का लिखा हुआ, फिल्म इम्तिहान मेरे प्यारे सुनने वालों जो 1994 का है, डायरेक्टर हरी बवेजा एंड नतुलक सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, मोहन जोशी, आसरानी साहब जी और दालीप तहिल का एक फिल्म। अभी एक गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों,
1: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture. Family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. Hey you!

चुराया तूने दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा जाने जा। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, गुलशन बावरा जी इनका लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मलिक के साज और संगीत पर फिल्म का नाम लाज

WhatsApp. Or die film 1992 का है 1992. Sunil Agnihotri का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है ये मूवी में जैकी श्रॉफ और नीलम कोठारी. मूवी में और है मैं देखता हूँ आसरानी साहब जी, मोहसिन खान, इशरत अली, भरत कपूर और साईद जावड़ी. मेरे प्यारे सुनो वालों, उजाला रेडियो पर आप चुन हैं बैक टू द फ्यूचर, आप सुन रहे हैं और अन्नू मलिक जी जो एक ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाते भी हैं, कंपोज करते हैं, इनके कुछ हिट्स आप तक पेश कर रहा हूं आज दूसरी बार अपनी ये प्रोग्राम में. उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी पसंद कर रहे होंगे, सुनते वक्त मजा ले रहे होंगे. It is 17 minutes over 8, मेरे प्यारे सुनो वालों, 8:17 व्यतीत हो चुके हैं और एक मूवी की ओर आपको ले चलेंगे जिसमें से दो नगमाएं आगे पीछे आप तक हम पेश करेंगे. एक बारिश का नगमा है, हियर इन होलंड रोटरडम में बारिश नहीं हो रहे हैं जहां स्टूडियो है रोटरडम, लेकिन मुझे मालूम है और यकीन से ये कह सकता हूँ कि इस वक्त कोई सुन रहे हैं प्रोग्राम शायद भारत देश में, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे बारिश हुए हैं, सूरीनाम में भी बारिश हो रहे हैं अलकदा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हमारे प्रिय सुनने वाले होंगे जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और जहां पर बारिश हो रहे होंगे. पहला गीत मेरे प्यारे सुनने वाले जो पेश करने जा रहा हूं, वही नगमा की सुन सुन सुन बरसात की धुन, कुमार सानू की आवाज. और उसके बाद आज हमने दिल का हर एक किस्सा तमाम कर दिया, वो भी कुमार सानू है, लेकिन वो आखिरी नगमा कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ मिलकर गाएंगे. कतिल शफाई का लिखा हुआ दो नगमाएं हैं, संगीतकार नटियल अन्नू मलिक जी, सिर या सर फिल्म का नाम है सर, और ये जो फिल्म है नीघ तीन द्रिय नीघ दखाए 1993. पेश करता हूँ दो खूबसूरत नगमाएं हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में. एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों.

आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गया और तुमको भी पागल मैंने कर दिया। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाजें, खूबसूरत गीत जो पेश हुआ है, और उससे पहले एक बरसात वाला नगमा कि सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, कुमार सानू की आवाज में। दोनों नगमाए कतिल शफाई ने लिखा, मेरे प्यारे सुनवालो और संगीतकार जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं, अन्नू मलिक जी संगीतकार। सर फिल्म का नाम सर 1993 का है, नीखत इंद्रिय नीखत, महेश भज्जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें नाजीरुद्दीन शाह, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, इन सभी ने जो काम किया है। सुशीला चंद्रिका सिंह जी, एतम सल्फीन डंग की वेल आपके एप के लिए, हिरेंद्रु और चित्रा जी एटमार सबरूक डंग की वेल आपके एप के लिए, मरखरी जी डंग की वेल आपके एप के लिए, एलिन जी एट हार्लेम बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए, आईफी जहांगीर शुक्रिया, आईफी जहांगीर राम सनाम दंग के वाल आपके ऐप के लिए, प्रभाजी ऐम सनाम सेंद्रम बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए, और दनहा शहर का मिक दंग के वाल मिक फोड़ी ऐप, आप सभी भरपूर एंजॉय करें मेरे प्यारे सिनेमालों, क्योंकि हम तो आखिरी घंटे में आन पड़े हैं और इस आखिरी घंटे का आखिरी आधे घंटे में हम आन पड़े हैं। कोशिश करता हूँ आपको कुछ और भी खूबसूरत नगमाएं सुनाने का। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे एक फिल्म के ओर मेरे प्यारे सिनेमालों। फिल्म का नाम है खुदार और ये फिल्म 1994 का, 1994। नगमा देवखोली, राहत इंदौरी और इंदौर जी का मिलन, इन सभी ने मिलकर गीत लिखा। सोनू निगम गीत गाएंगे, अन्नू मल्लिक के साज और संगीत पर ये नगमा।

अपनी गम मेरे प्यारे सुनो वालों, वो आंख है क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें डट भरे गीत देवखोली राहत इंदौरी और इंदौर साहब जी का मिलन गीत सभी ने लिखा, सोनू निगम जी ने गाए हैं अनु मलिक की साज और संगीत पर। 1994 नहीं फिर नहीं का फिल्म खुटार से हमने नगमा को निकाले। इकबाल दुरानी जी ने डायरेक्ट किया है गोविंदा करिश्मा कपूर कादर खान का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी दो नगमाएं पेश करूंगा और इस दो आखिरी नगमाएं के बाद हम यहां से रुखसत होंगे स्टूडियो से बैक टू द फ्यूचर। हम अगले हफ्ते फिर 15 तारीख पेश करेंगे। मोरखनाफंत नीख यूली बहनेकर रात्रि में 7 बजे नीट 8 यूर नीट 3 यूर नहीं मोरखनाफंत 7 यूर इन द आवंत हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज। आखिरी मूवी आ गले लग जा ये भी नेक दिन फिर नेक तक का मूवी है। 1994 हमीद अली जी का डायरेक्ट किया हुआ जुगल हंसराज और मिला मटोंकर का एक फिल्म। ये फिल्म से दो नगमाएं नवाब आरसू और अनवर सागर जी का लिखा हुआ जिसका संगीतकार है अनु मलिक। कविता कृष्णमूर्ति पहला गीत विद अभिजीत और दूसरा गीत विद कुमार सानू पेश करता हूं। मेरे प्यारे सुनो, राह पुल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर कल मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

इसी तरह से भी आपने सुने हैं गाते चले उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आप सुने हैं उजाला से कॉफी चाय मिदा शो एंड एक बेन नतुलक इंतजार में है ऑफ आनंद चंद्रिका सिंह, जिसके साथ हम बात करने वाले हैं ऑफर अल्लाह जाक दिया टू दून आज के न्यूज़ या पिछले वीकेंड के बारे में जो न्यूज़ था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड नतुलक लुख्तग ऑनवर्प हमने जानी लगा कि कौन अनुवर्प उले कैगा मैं एक हैव वेल एन अनुवर्प दी एक फॉर वीक हाथ आल हाथ आंगकोंडर ओकर बारे में हम भी मांगी लगा बताएं दूसरों में तो इन ऑफ उजाला रेडियो

उजाला रेडियो भी है, सुनो लो हर एक काम काज के लिए आप हमारा वेबसाइट पे जाइए ujala.net। प्रोग्राम में हम आपको नमस्कार सुनाने गुजार हैं मुख सिंह के आवाज में एक्सप्रेस म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सप्रेस ook aanwezig op 29 of 30 augustus Ujala's Brasa Mela Fest in Den Haag, GIA Event Center mee.

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल।

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझे।